करने और चीजें डिलीवर करूं तो आई डिलीवर करूं तो आंधी हो अन्य तेरा सोचे रख पची अपने करियर करने पची बोला और दूसरे पची नहीं करने

केंद्र संगठन सहकारी रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब ऑफ काठमांडू मीता साथियों ने विश्वभर का रोटरी फ्रेंड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित के लिए प्रस्तुत संदेश।

0: को दांत को जला देने के पश्चात नासिक ठीक रहने
1: जिसमें दांत निकालने
0: सदा बुरा की ठीक से दांत रखने
1: सफल नवीन ने पूरे शेर दांत रखने
0: काम को ठीक में ताकत का नवीन को दांत निकालने
1: आखिर को दांत तथा दांत को कॉस्मेटिक उपचार करने
0: इसी तरह